शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: JD Music.

कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: दिला दे घर बना दे घर दिला दे घर
2: ओ माय गॉड दिस इज ओरिजिनल

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

तो बेकदर यार बोले दे खबर, मैं दुनिया से बेखबर, ए खुदा मुझे दे सबर, तू साथ है तो किसका डर, वो देता हर दिल में घर, तो क्यों इतना बेसबर। जिंदगी खेल नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, कितनों को झेल हुई, जुर्म में इजाफा है, हम आना के देर हुई, इस कलम से वादा है।

खेल नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, देखी दोपहर नहीं, रातों का राजा मैं, हमारा ये देर हुई पर अपनों से वादा है, इस जंगल को शेर नहीं अंधेरा सिखाता है।

0: कोई कैसे महफूज है मेरा सवाल किसी का उरूज
1: सर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर हर जहर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

0: राजनीति का अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खानी कितड़ बहनू रेला आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

जलने दो, जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो। जलने दो, जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनके, तू ज्यादा ना सुना कर उनके, बस अपने ही किया कर मन के, बस अपने ही किया कर मन के। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करे फिर तू उनकी।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

नटक नटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमोन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।
1: ナルト君の命は一つじゃないって。

0: voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: राजा पास मेरे तू आजा आजा काट दे सारा गम जमाने से है मिला तुझे ताजा ताजा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

महकती है सदियां, खुशबू का दर है ये शहरे मोहब्बत, मेरा हम सफर है केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें, है दिलकश ये मंजर, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है। है परियों के महलों के किस्से कहानी, झीलों को जोड़े है झेलम का पानी, सफर तू बता मुझको चलना किधर है मुझको तलब खुद से मिलना किधर है, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है।

0: बात बे वफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।
1: Your home for community. CJMR 1320.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: को नफरत में तोले ना कोई।
1: हिप हॉप बनी लाइफ, कपड़े दिए खाना दिया, फैंस के रूप में खजाना, जीने के लिए जमाना दिया, परायों ने प्यार अपनों ने ताना दिया। मैं हिप हॉप नहीं, कईयों ने दावा किया, मैंने हर तरीके का गाना दिया, नास के लेवल के साथ गाना किया। टेल मी कितने रैपरों ने जो गाया जिया, बता दो कितने रैपरों ने जो गाया जिया।

जब तू साथ नहीं होती तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: Shahar di awaz, dila di pukar, your city, your voice, your radio star. Aagya fer to ek var, tuhada apna CJMR 1320. CJMR 1320.
2: चावला एंटरटेनमेंट बड़े मान नाल पेश कर देने तो हाड़ा अपना रेडियो शो एशियन विजन दिलानू रखो तुसी संभाल के आ गया जे हरमन प्यारा आरजे अर्श चावला

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबी को वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165
1: ओ हेलो यार मेरा भी लोड ले जी ट्रक फेर खड़ गया यार
2: ओ प्रावा हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा
1: सच्ची
2: ओ मुच्ची
1: फेर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी जो के इंजन रीबिल्ड ट्रांसमिशन रीबिल्ड रिपेयर डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल रिपेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे
2: इना कोड़ा सालना दा तजुर्बा
1: हुन एड्रेस भी लिखा
2: ले लिख ला 1 गुड मार्क प्लेस इटोबिकोक यूनिट 5
1: कॉल 647-706-9257
3: जीवना या मरना इंसान दे हाथ नहीं परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दिया धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नूं विदा करना साडे वस है अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो रैक्सडेल दे विच लुटस फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दी रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन लुटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलता है वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 647-547-8188 लोटस फ्यूनरल होम
4: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਜ਼ਨ ਅਰਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: दिस इज CJMRAM ऑपरेटिंग ऑन 1320 kHz फ्रॉम मिसिसागा, ऑन्टारियो। वी आर करेंटली कंडक्टिंग टेक्निकल टेस्ट अंडर authorization from Innovation Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
2: शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।

0: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड लै जी, ट्रक फेर खड़ गया यार।
1: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा ढेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
0: सच्ची?
1: ओ मुच्ची,
0: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा ढेसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
1: इना कोड़ा सालना दा तजुर्बा।
0: हुन एड्रेस भी लिखा।
1: ले लिख ला, वन गुड मार्क प्लेस, इटोबी कोक, यूनिट 5।
0: कॉल 6477069257 6477069257।
2: नोट करो कि जेकर तुसी अपने घर या बिजनेस अदारे दे विच प्रोफेशनल पेंटर द्वारा पेंट करवाना चाहते हो तो चेते रखो गिल हाउस पेंटिंग, जो तुहाडे घर दे विच पेंट तो पहला हर एक कोना प्रॉपर तरीके नाल कवर करदे हन। वाजब रेट अते समय सिर काम करवाउण लई अते एस्टीमेट बिलकुल फ्री लैण लई कॉल करो कमल गिल 6478339960 6478335960 गिल हाउस पेंटिंग।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। 27 ਸਪਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਈਨਜ਼ ਮੈਨਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਬਿਲਡ ਬੈਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੁਗੈਦਰ, ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਅਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
4: It's a paid election ad.
5: अगर तुहाडे बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है, तुसी उस तो छुटकारा पाना चाहुंदे हो, तो इको एक नाम नु याद रखना, पिछले 25 सालां तो कम्युनिटी दे विच मन्या परमन्या नाम बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह 416-451-4565। 25 साल दी दिंदे ने नाल वारंटी। 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा लई पानी दी लीकेज तो पाओ छुटकारा।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165
1: की थोड़े बैंक ने मॉर्गेज नो इनकार कर देता है की थोड़ी क्लोजिंग लागे आ रही है या तानु पैसे दी पैगी है लोड तो एको एक नाम याद रखो मॉर्गेज अलायंस नाल काम कर दे विक सैदोव फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज ए लेंडर बी लेंडर प्राइवेट फंड्स चाहते हो घर दी रीफाइनेंसिंग करवाना चाहते हो या तुसी 24 घंटे दे विच विच फंड्स चाहते हो तो एको एक नाम विक सैदोव 30 टॉप फ्लाइट ड्राइव यूनिट नंबर 1 इन मिसिसागा वधेरे जानकारी लिए कॉल 647-968-8272 647-968-8272 license number 10530

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers,
1: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist,
1: HK Movers.
4: HK Movers.
5: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
6: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कैनेडियन मेड इंपोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर।
5: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 647-382-5500।
7: तुसी सुन रहे हो एशियन विजन, अर्श चावला दे नाल।

0: लॉजी एक बार फिर तो स्वागत है प्रोग्राम दे विच थोड़े मनपसंद गीत एशियन विजन दी इस संडे दी महफिल दे विच तुसानू सुनिया बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। मैं एक बेनती करना चाहवांगा तुसी साडे रब वर्गे स्रोते हो काफी तुसी ऑफ दी ईयर सानू कॉल करके फीडबैक दे रहे हो आवाज कलैरिटी दे वास्ते थैंक यू सो मच। दूर तक साडी आवाज तुसी सुन रहे हो जी एंड एक बार फिर तो मुड़ वापस 1320 आ चुका जी। सो तुसी अगर अपना सैटरडे संडे अपना खुद का शो होस्ट करना चाहते हो टाइम स्लॉट साडे को अवेलेबल ने आने वाले दो तीन दिन दे विच विच असी सारे सारे जिन्ने भी प्रोग्रामिंग्स ने साडे जिहड़े प्रोग्राम्स उड़ीके ने असी ओ वड़े लेवल ते असी थोड़े वास्ते अनाउंस करन जा रहे हैं जिथे तुसी सानू ऑलवेज पुछ रहे हो कि कौन कौन आ रहा किथे किथे किहड़े किहड़े टाइम ते किहड़ा किहड़ा होस्ट आ रहा। बस थोड़ा सा इंतजार ते असी तुहानू हौली हौली एक एक होस्ट दा नाम तुहानू असी बहुत जल्द दस दवांगे जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया तुसी काफी सानू कॉल्स करके अपने फीडबैक दे रहे हो खास करके क्वालिटी नू लैके। सो तां करके असी इस नू एज अ टेस्टिंग फेज ही कह रहे हैं। सो इस टेस्टिंग फेज दे मामले दे विच तुहाडा सहयोग बहुत चाहिदा सानू। सो जदों भी असी अपील करदे हां कि साडी आवाज तुहानू कित्थों तक सुनाई दे रही है कित्थों तक पहुंच रही है जरूर सानू तुसी फीडबैक दे दिया करो सानू ए चंगा लगता है जी। खास करके जो साडी टेस्टिंग पीरियड हुंदी है तां सानू फिर कह लो कि एक क्वालिटी अते जिहड़े साडे इंजीनियर्स ने उन्हां नू आपां दस सकीए। 3:50 हो चुके ने तुसी इस वेले सुन रहे हो छावला न्यूज नैटवर्क टोरोंटो। बहुत सारियां गल्लां बातां ते बहुत सारे असी शोज थोड़े वास्ते आने वाले दिनों दे विच काफी वड्डे वड्डे सरप्राइजेस भी तुहानू असी दसांगे जी एंड खास करके ओ जिहड़े कह लो कि सरप्राइजेस जो असी बहुत एक्साइटेड आ थोड़े वास्ते थोड़े नाल शेयर करन दी। खैर तुसी इस वेले सुन रहे हो छावला न्यूज नैटवर्क टोरोंटो मैं हां तुहाडा दोस्त होस्ट अर्श छावला।
1: ताजियां सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दालां आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288 8557 अनाज मार्ट। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers,
1: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704 pe.
1: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist,
1: HK Movers.
4: HK Movers.
5: ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਰੀਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਰਿਐਲਟੀ ਦੇ ਗੌਡੀ ਖੁਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸਾਊਥ ਕੈਲਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੈਲਡਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਹਾਈਵੇ 10 ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 410 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 15 acres ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁਣ ਸੇਲ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਕੈਲਡਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320